0: आपका किसी मरीज़ का जो है ना, या किसी इंसान का जो बच्चा है वो बीमार हो गया, उसके पास वो ले जाते हैं, वो इंजेक्शंस पे उसको आदि कर देता है। वो बच्चा जब थोड़ा सा वो उसकी एज ज़्यादा होती है, वो जब अगर उसको कोई मसला होता है तो उस पर फिर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते, क्योंकि वो रेजिस्ट हो चुका होता है। उसको अताई डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा लगा के उसकी इम्यूनिटी का बेड़ा गर्क कर दिए। तो वो ये चीज़ जो है ना, ये स्टॉप होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। अगर ये स्टॉप हो गई तो हमारे डॉक्टर्स अगर सरकारी जॉब नहीं भी करते, अगर उनको सरकारी जॉब अगर नहीं भी मिल रही, गवर्नमेंट उनको अकोमोडेट नहीं कर सकती, तो वो कम से कम अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के वो अपनी करियर को परस्यू कर सकते हैं और लोगों को अच्छी खिदमत दे सकते
1: दे
0: हैं
1: सकते हैं।
0: बजाय इन अथाई डॉक्टर्स के।
1: अच्छा
0: तो ये ट्रेंड, अब मैं आपको बताऊं कि हमारे जो कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे एक MBBS डॉक्टर बैठा हुआ है और एक अटाई डॉक्टर के ज़्यादा मरीज़ हैं। इसमें हमारी आवाम की भी गलती है और हमारी गवर्नमेंट की भी
1: नहीं,
0: गलती है।
1: तो इस तरह की अगर सूरत आ रहा है तो हुकूमत वक्त ये एक्शन नहीं ले सकती,
0: हुकूमत तो वक्त एक्शन ले लेती है, फिर पैसे उनको, बस वही बात
1: दोबारा
0: है,
1: फिर हो जाता है, इस
0: नहीं
1: तरह होता
0: खुल
1: है।
0: जाता है।
1: ठीक है। अच्छा, MBBS की डिग्री
0: जी
1: आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो MBBS की जो डिग्री है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में, वो अगर उसको मैं कंपेयर करना चाहूँ यहाँ डेनमार्क में या पूरी दुनिया में, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
0: मैं आपको ये पाकिस्तान की जो ये एक चीज़ है कि वहाँ पे जो हमारी पढ़ाई है MBBS की, या जो ट्रेनिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है।
1: अच्छा
0: पाकिस्तानी अगर एक ट्रेन डॉक्टर अगर बाहर आता है तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होके आता है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे आपको, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और फिर भी आप लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो वो उस हवाले से उनकी ट्रेनिंग और उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और वो काफ़ी मतलब उनकी वसी
1: नहीं,
0: उनका
1: ये तो
0: वो होता
1: आप
0: है।
1: एक्सपीरियंस
0: जी
1: बता रहे हैं ना,
0: जी
1: मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये डिग्री के लिहाज से इसका इनका स्टैंडर्ड जो है बाकी ममालक से, यूरोपियन ममालक से या पूरी दुनिया से कैसे मुआयना किया जाता
0: मैं
1: है?
0: वही बात कि पाकिस्तान में जो डिग्री का हो रही है वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं। उनका
1: अच्छा
0: रीज़न ये है, उनकी डिग्री की वैल्यू, तो वो तो पाकिस्तान की वैल्यू की वजह से जो है ना, आपको
1: अच्छा
0: पता है कि वो
1: इस तरह से
0: एफिलिएट नहीं है।
1: ठीक है।
0: अगर बात की जाए वहाँ के डॉक्टर की कॉम्पिटेंसी की, तो वो बहुत ज़्यादा
1: हाँ
0: मतलब
1: ये
0: वो
1: तो है,
0: कॉम्पिटेंट
1: ये
0: डॉक्टर्स
1: बिल्कुल
0: हैं उनके,
1: है इस तरह।
0: लेकिन वो वही बात है कि पाकिस्तान की अगर वो नहीं है इतना
1: यानी
0: मतलब
1: कम
0: एफिलिएशन,
1: रिसोर्सेज में
0: हाँ
1: वो कर
0: जी
1: रहे हैं आप।
0: एफिलिएशन इतनी नहीं है, तो वो उनको इतना फिर वो बाहर
1: ठीक है
0: ममालिक में वो उनको टेस्ट देने पड़ते हैं और वो सारा कुछ करना पड़ता
1: ठीक
0: है
1: है।
0: जी।
1: अच्छा, पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि बाकी दुनिया के डॉक्टर्स जाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को फ्रेश करने के लिए मुख्तलिफ शोबों में,
0: ये ट्रेंड इतना
1: आपका
0: ज़्यादा
1: इत्तेफाक?
0: नहीं है, लेकिन हैं कुछ
1: पाकिस्तान
0: डॉक्टर्स
1: से तो
0: हैं।
1: जाते हैं, ये
0: पाकिस्तान
1: तो
0: से
1: है।
0: तो जाहिर सी बात है वो
1: जी
0: तो
1: जी
0: जाते हैं, और
1: जाते हैं।
0: वो आजकल तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ का ट्रेंड हुआ हुआ है,
1: ठीक
0: लेकिन
1: है
0: आए हैं बाहर बाहर ममालिक से भी काफ़ी डॉक्टर्स आए हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उन्होंने
1: ठीक
0: काम किया, शिफा हॉस्पिटल में काम
1: ठीक
0: किया उन्होंने, पिम्स में काम किए।
1: चले
0: जी
1: डेनमार्क आप आ गए
0: जी
1: और आपका जनाब यहाँ अराइवल हो गई, और सबसे पहले तो ये बताएं कि डेनमार्क कैसा आपको लगा, कोपेनहेगन डेनमार्क?
0: डेनमार्क बहुत कलरफुल है, बहुत
1: ठीक है,
0: प्यारा कंट्री
1: किस
0: है।
1: हवाले से आप कहना चाहेंगे, लोगों के रवैये से, यहाँ के सिस्टम के हवाले से? मेडिकल का तो बाद में फिर
0: जी
1: पूछते
0: यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत फ्रेंडली लोग हैं, बहुत
1: हैं, अपनी
0: ज़्यादा
1: कम्युनिटी का बताएं और यहाँ डैनिश जो कम्युनिटी उसका, अगर
0: अपनी
1: आपका ट्रेंड हुआ।
0: अपनी कम्युनिटी से तो मेरा मतलब ज़्यादातर लोगों से मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ,
1: अच्छा,
0: आपसे इंटरेक्शन हुआ और आपसे बड़ी
1: मतलब
0: अच्छी
1: आप
0: गपशप लगी है, और आप, हाँ
1: अभी टाइम थोड़ा है ना
0: जी।
1: आपको
0: और
1: मिलने?
0: बाकी जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे माहौल, तो काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं और काफ़ी
1: अच्छा
0: मतलब रूल्स पे चलने वाले लोग हैं, डिसिप्लिन्ड लोग हैं,
1: ठीक है,
0: और इसी तरह कौमें तरक्की करती हैं।
1: ज़ाहिर है।
0: तो किसी के साथ ज़्यादती, किसी का नुकसान करना, किसी का हक मारना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे
1: ठीक है,
0: मैंने नोट किया नहीं।
1: यहाँ पाकिस्तानी त्यौहार जो होते हैं,
0: जी
1: 25 दिसंबर इकबाल डे,
0: जी
1: 14 अगस्त, 23 मार्च या इस तरह के बाकी इवेंट्स, फैमिली इवेंट्स यहाँ काफ़ी होते हैं, और आपका कहीं जाने का इत्तेफाक हुआ या अभी तक नहीं?
0: अभी तक नहीं हुआ जी
1: अच्छा
0: सब, अभी तक मेरा कहीं जाने का वो नहीं
1: चले,
0: हुआ है
1: इंशाल्लाह
0: पाकिस्तान में।
1: ताला अभी आप तो इधर ही हैं ना,
0: जी
1: तो आपको दिखाएंगे भी। अब
0: इंशाल्लाह।
1: यहाँ अम्बेसी, पाकिस्तान अम्बेसी में हमारे इवेंट्स होते हैं, ये
0: अच्छा
1: अभी हुआ है रिसेंटली 14 अगस्त, बड़ा अच्छा, और उससे पहले 14 अगस्त बाकी तंजीमात यहाँ जो हैं उन्होंने भी सेलिब्रेट किया
0: अच्छा
1: मुख्तलिफ जगहों पे। लेकिन उसके साथ साथ ये जब समर शुरू होता है ना यहाँ, यहाँ एक ट्रेंड एक चल निकला है कि यहाँ समर फेस्ट के नाम से या मैंगो फेस्ट के

0: پروگرام کے حوالے سے یہاں مختلف تنظیمات یہ ارینج کرتی ہیں, تو اس میں پاکستان سے یہ جو ہماری سوغات ہے عام یا باقی جو چیزیں ہیں جس میں کھانا بھی ہوتا ہے, کپڑے وغیرہ یا باقی جو ہمارا کلچر ہے اس کو بھی انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اس طرح کی یہ ایونٹس میں آپ ضرور شرکت کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے. اچھا دوسرا ابھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں آپ کا داخلہ ہوا یا انٹرویو میڈیکل کے حوالے سے, تو سب سے پہلا دن کیسا آپ کا رہا جب آپ یہاں آئے؟
1: یہاں پہ ظاہر سی بات ہے پہلے جب آیا تھا تو پہلا دن تو کافی ایسے تھکان تھی, تھکے ہوئے تھے کافی, اور موسم اچھا تھا کیونکہ ہم بالکل جو ٹف گرمی تھی اس میں آئے تھے, تو پاکستان میں کافی گرمی تھی لیکن یہاں پہ موسم بہت اچھا تھا. تو پھر اس کے بعد گھر وغیرہ ہم نے کیا, اس کی رہنے کی بندوبست کیا. اس کے بعد جب ہماری سیٹنگ ہو گئی ایک مہینہ ڈیڑھ مہینے میں, تو کافی اچھا ٹائم گزر رہا ہے ابھی بھی. میڈیکل جو ان کی لینگویج جو اسکولز ہیں ان کو اصل میں ان کے لیولز ہوتے ہیں, PD1 PD2 PD3 لیولز ہوتے ہیں, تو اس میں میں نے PD3 لیول ہمارا جو ہمیں درکار ہوتا ہے میڈیکل سسٹم میں انٹری کے لیے PD3 لیول درکار ہوتا ہے, تو میں اس کے کورس میں میں نے انٹری لی اور میں ابھی اس کو کنٹینیو کر رہا ہوں ان شاء اللہ. اس کو کنٹینیو کر کے وہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر.
0: اچھا تو کسی میڈیکل کے پروفیشن میں یا میڈیکل کے لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوا ہے؟
1: جی میڈیکل کے لوگوں سے انٹریکشن ہوا ہے, ڈاکٹر سے انٹریکشن ہوا ہے. اصل میں ہمارا جو یہ اسکول ہے تو یہ پھر ہمارے تیسرے ماڈیول کے بعد یہ پھر آپ کو ہاسپٹل کے ٹورز وغیرہ اور وہاں پہ آپ کو پھر وہ انٹریکشن ان کے ساتھ ہاسپٹل کے ڈاکٹرس کے ساتھ پیشنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تھوڑا بہت, تو وہ چیز سکھاتے ہیں.
0: تو کیسے آپ ڈفرینٹ کرتے ہیں پاکستان کے میڈیکل سسٹم سے اور یہاں کے سسٹم سے, یہاں کیسا ہے اور وہاں؟
1: اگر دیکھا جائے ریسورسز کے حوالے سے تو یہاں پہ بہت زیادہ ان کے پاس ریسورسز ہیں اور ان کی فیسیلیٹیز, اور پیشنٹ کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور بہت مطلب ان کو.
0: اور سروس کے لحاظ سے کیسے ہے؟
1: سروس کے لحاظ سے اس طرح ہے کہ اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو آپ کو جو یہ جو علاج ہے وہ آپ کو بہت ایزیلی اویلیبل ہے, ڈاکٹرز بہت زیادہ ہیں. آپ ایک کنسلٹنٹ کے ساتھ آپ اگر وہاں پہ جا کے آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو آپ کو جلدی اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے, آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہو جاتا ہے, آپ کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں جو آپ نے کروانے ہیں, سارا کچھ بہت ایزیلی ہوتا ہے.
0: اچھا
1: یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو کنسلٹنٹ سے ملنے کے لیے مہینوں لگ جاتے ہیں,
0: یعنی ویٹنگ لسٹ
1: بہت زیادہ ہے. یہاں پہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو ٹیسٹ نہیں کرنے دیتے, اور آپ کو اگر ایمرجنسی کنڈیشن آپ کی نہیں ہے تو آپ کو بہت زیادہ ڈیلے کرتے ہیں, اور یہ چیز تھوڑی سی ٹھیک ہے ہوتی ہے.
0: اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فیوچر آپ یہ سارا سسٹم اگر آپ کمپلیٹ کرتے ہیں لینگویج کا بھی اور باقی جو ہیں چیزیں, تو پھر آپ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یہاں آپ رہ کے اپنی خدمات کو پیش کریں؟
1: جی ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ ادھر آئے ہیں محنت کر رہے ہیں تو پھر ادھر انٹری ہمیں مل جائے اور یہاں پہ ہم ایز اے ڈاکٹر کام کریں تو بہت اچھی بات ہے.
0: یہاں بھی ہمارے ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی میں کافی ڈاکٹرز ہیں جو اپنی خدمات کو پیش کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ ڈنمارک کو چوز کیا یہ اچھا کیا ہے, کیونکہ میں بھی ابھی 25-26 سال سے یہاں رہ رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے یہاں کا سسٹم کس طرح کا ہے اگر ہم کمپیئر کریں باقی یورپین ممالک کے ساتھ. تو مزے ناظرین باتیں ہو رہی ہیں کافی, اور میں امید کرتا ہوں کہ کافی انفارمیشن بھی آپ کو مل رہی ہوگی اور اس کا فیڈ بیک بھی دیں گے. اور رضا مصفا صاحب میں چاہوں گا کہ وہ اپنے موبائل کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ہمارے پروگرام میں ذرا شامل ہوں, اور میں نے تو جتنی باتیں میرے ذہن میں یا دل میں تھیں وہ میں نے کر دی. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ایکسپیرئنس کے حوالے سے ڈاکٹر سلمان سے کچھ بات کریں.
2: بہت شکریہ ظفر بھائی. ابھی حال میں یہ پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان ایک ہاسپٹل میں آگ لگی.
0: جی
2: دل کو دہلا دینے والی جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں وہاں سے, لیکن حقیقت ابھی بھی کسی کو, کوئی کہتا ہے کہ جی 14 بچے تھے وہاں پہ, کوئی کہتے ہیں 50 تھے, مختلف خبریں ہیں. تو وہاں پہ انسانیت جو ہے نا, انسانیت اگر हम कहते हैं ना कि मुल्क ने तरक्की कर ली, तो ये नहीं होता कि सड़कें बन गई, पुल बन गए, वो फास्ट ट्रेनें चल गई, सड़कें साफ हैं, ये है वो है। जफा भाई, मेरे हिसाब से अगर आप देखते हैं ना, तो वहाँ पे जब एक मुल्क तरक्की करता है ना, तो लोगों का जो इंसानी शऊर, इंसानियत, इंसानी हकूक जो है, तो आप देख लें वहां पे जब आग लगी, तो खैर एक वीडियो मैंने देखी जहां पे एक नर्स एक बच्चे को लेके वहां से बचाने में कामयाब हो गई, लेकिन जो वहां पे जाने बचाने वाले भी हैं, जिस तरह भी डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, वो बखूबी जानते हैं कि किस तरह वहां पे रिश्वतें ली जाती हैं, किस तरह वहां पे जो है वो काम किए जाते हैं, लोगों को जो है वो किस तरह जो है वो ज़लील ख्वार। अगर आप किसी महकमे को भी पाकिस्तान ले लेना, कहते हैं ना कि पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की बुराई ना करें, आप इस तरह की बातें करते हैं तो वो कहते हैं ना कि अपने पेट से पर्दा उठाएं तो वो अपना ही पेट नंगा होता है, लेकिन जब तक आप नहीं उठाएंगे तब तक शायद हमें शर्म भी नहीं आएगी। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में ये जो इंसानियत के नाम पर हम कहते हैं जी हम बड़े मुसलमान हैं, इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बनाया गया था, बड़ी हमारे बुजुर्गों ने जो है, हमारी माओ ने अपनी जानें इज्जतें दे के जो है ये मुल्क बनाया था, तो क्या वाकई वो मुल्क है जो जिसके लिए हमने कुर्बानियां दी थी, बनाया था, और जो खास तौर पे पिम्स हॉस्पिटल में जो वहां पे 14 बच्चे जुलस के मर गए, और जिस तरह हमारे वो मिनिस्टर साहब हैं जो अकड़ अकड़ के बातें करते हैं, उनको इतनी शर्म नहीं आती कि एक तो वो लोग हैं जिनके बच्चे जो हैं वो मर गए हैं, फिर आप उनके साथ अकड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
1: बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है ये पिम्स में, और मैं जहाँ तक मैं बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, कोई कोई मतलब आप अगर उधर हॉस्पिटल्स की जो सरकारी हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त उन्होंने उनको बनाया हुआ है, लेकिन सरकारी अस्पतालों की हालात ऐसे नहीं है कि वहाँ पर आप इलाज करवाने जा सकें, वहाँ पे उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। हालांकि पिम्स बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो हमारे इस्लामाबाद में, और काफ़ी वहाँ पे लोगों का इलाज होता है, लेकिन वही बात है कि कुछ हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन हादसे आपने चेक एंड बैलेंस तो रखना है उन चीज़ों का, जहाँ तक बात है वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इन चीज़ों की, क्योंकि ये जो नर्सरी होती है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है, यहाँ पर उन बच्चों को रखा जाता है जो कि प्री मेच्योर बर्थ लेते हैं, तो उनके लिए उधर उधर का एनवायरनमेंट, वहाँ की जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो सिस्टम है, उनको बहुत ज़्यादा वो एक तरीके से इस तरीके से रखना होता है कि उस बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो, या वो उस एनवायरनमेंट में वो दिन गुजार सके, उसके बाद फिर वो मैच्योर होता है। तो ऐसे सेंसिटिव एरिया में और ऐसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट में अगर आग लगती है तो ये फेलियर है हमारे
2: सिस्टम का। वहाँ पे तो अगर आप जब भी कोई किसी का भी बयान सुनते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये मेरे अंडर नहीं आता। आप एक मिनिस्टर हैं, ठीक है कि आप मिनिस्टर हैं, आप वहाँ पे डायरेक्टर नहीं लगे हुए, आप वहाँ पे नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लेकिन एक पूरा निज़ाम तो आपके नीचे है ना। चले इसी तरह कर लेते हैं कि अगर इन 14 बच्चों ने जो नंबर अभी हमें दे रहे हैं, अगर हम उन्हीं को इस ये समझ के कि हमने उनकी कुर्बानी दे दी और आइंदा जो है इस तरह के हादसे नहीं होंगे। हमने कराची में फैक्ट्रियों में आग लगी देखी, वहां पे लोग किस तरह झुलस के मर गए, हमने शॉपिंग मॉल देखे हैं वहां पे जहां आग लगी, तो हम कब सीखेंगे ये अपने इस निज़ाम से, अपनी इन गलतियों से, अपनी इन कोताहियों से, कि आइंदा हमने इन लोगों की जो है वो जाने नहीं जाया होने देनी। क्योंकि मैंने शुरू में कहा ना कि इंसानियत तो मेरे ख्याल में शायद बहुत कम जो है वो पाकिस्तान में रह गई है।
1: जी। ये देखें, जिम्मेदारी, एक चीज़ की जिम्मेदारी लेना ये बहुत बड़ा काम होता है। हमारे मिनिस्टर्स वोट लेके आ जाते हैं और सिर्फ उनको जो चाहिए प्रोटोकॉल और वो चीज़ें वो इंजॉय करते हैं, लेकिन अगर कोई भी ऐसा मामला होता है जिम्मेदारी नहीं लेते। हालांकि ये जो मामला हुआ है ये हेल्थ मिनिस्टर का काम है। दूसरी बात मैं आपको करूं कि हमारी आवाम भी और हमारे जो ये ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स हैं ये डॉक्टर को ब्लेम करते हैं इस चीज़ के लिए। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर का काम है इलाज करना। अगर डॉक्टर को एक रिसोर्स नहीं मिल रही, अब फॉर एग्जांपल मैं एक हॉस्पिटल की बात करूं कि वहाँ पे मैंने एक मरीज़ को सीटी स्कैन लिख के दिया, एक एक एक गरीब मरीज़ मेरे पास आया, उसके पास पैसे नहीं है अफोर्ड करने के कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट सीटी स्कैन करवा सके। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने उसके लिए सीटी स्कैन लिखा है, अब मेरे हॉस्पिटल में सीटी स्कैन मशीन नहीं है, इसकी में किसकी गलती है? ये डॉक्टर की गलती है, ये हेल्थ मिनिस्टर की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है? लेकिन सारा मलबा किस पे आता है? डॉक्टर पे। ठीक है जी, कि डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं चलाता, डॉक्टर सिर्फ हॉस्पिटल में लोगों का इलाज करता है, हॉस्पिटल चलाने का काम हुकूमत का है और हेल्थ मिनिस्टर और एमएस उन चीजों का होता है। तो इंतजामिया जिम्मेदारी नहीं लेती और ये सबसे बड़ा एक नाकामी है हमारे माशरे के लिए।
0: नहीं, अभी आपने रजा साहब ये फरमाया कि हेल्थ मिनिस्टर है सैयद कमाल मुस्तफा कमाल, ये देखें इसका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड कहा जाता है कि बड़ा अच्छा था, जब मेयर था कराची का, बड़े अच्छे काम किए उस दौर में इसने, लेकिन उसको उसने मट्टी में डाल दिया सारा, एक साइड पे रख के ना, जिस तरह उसने बयान दिए और एक खातून उसके साथ गुफ्तगू कर रही है और उसके साथ इस तरह वो इस लहजे में बात कर रहा है, बल्कि उसके साथ जो उसका वो पिट्ठू था वो उसको बड़े मतलब सख्त अल्फाज में मना कर रहा है, चुप करो, जबान बंद करो, और ये वो यहाँ तक कह रहा है कि ये तुम्हारे बाप के लिए 20,000 रोज़ाना का ये खर्चा है और ये तुम्हारे बाप के लिए कर रहे हैं, तो क्या वो अपने
2: ज़ाती तौर पे वो कर रहा है? अभी इरफान गिलानी साहब आए हुए थे जो
0: देखा मैंने प्रोग्राम,
2: तो उनसे मैंने यही सवाल किया कि जब सियासतदान जो हमारे टैक्स पेयर से हमारी तनख्वाह, हम उनको तनख्वाह देते हैं, वो हमारे मुलाजम है बेसिकली, हम उनको, इनको तो खैर हमने इलेक्ट भी नहीं किया, इनको तो किसी और ने सिलेक्ट करके ले आए हैं, और एक वो जनाब कमाल साहब को तो एक ने उनकी औकात भी याद दिला दी कि भाईजान आप फॉर्म 47 पे आए हुए हैं, तो आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही छोड़ के चले गए। लेकिन सियासतदान, लेकिन उसमें फिर आते हैं वापस कि हमारा आवाम का कसूर है कि हमने इनको अपने सर पे बिठाया हुआ है, आते हैं हम इनको प्रोटोकॉल भी देते हैं, इन पे फूलों की पत्तियां भी फेंकते हैं, यहाँ पे एम्बेसडर देख लें हम, उन वो एक 12, 14, 16, 21, 20 ग्रेड के जो हैं वो आते हैं, लेकिन हम उनको इस तरह हिज एक्सीलेंसी जनाब आ गए हैं, पता नहीं केड़ी तोप है, लेकिन वो होते हैं हमारे मुलाजम है, हमारे लिए आते हैं। ये अभी मैं आपको एम्बेसी का वाकया सुनाता हूँ, अभी दो बच्चियाँ गई थी, एक का पासपोर्ट जो है वो गुम हो गया था तो काफी अरसे से उसका बना नहीं है, तो वो बता रही थी कि वहां पे जो बैठे हुए थे उन्होंने जो उनसे सवाल किए हैं, ठीक है, वो आप पहले क्यों नहीं आई, आपने पियूं क्यों नहीं किया, आपने हूँ भाईजान आपके पास आई है, आपको जो रिक्वायर है क्या वो लेके आई है कागज या नहीं लेके आई? अच्छा, एक वो रिपोर्ट थी डेनिश में, तो वो कहते हैं ये क्या है, तो कहती है आगे से वो भी बच्ची यहाँ की जमी पली, कहती है कि आपको डेनिश नहीं पढ़नी आती, जाहिर है वो तो पाकिस्तान से, वो कहते हैं नहीं आते, वो उसने फिर बताया कि भाई ये रिपोर्ट इसके लिए है, ठीक है। तो हमारे रवैये जो है ना, हमारा हमने अपने मुलाजमों को भी अपने, लेकिन जो गरीब मुलाजम अपने घर में रखते हैं ना झाड़ू पोछे के लिए, जो सलूक हम उनके साथ करते हैं यकीन करें वो भी जो है ना दिल जला देते हैं,
0: ऐसे ही है।
2: तो लेकिन ये जिनके पास थोड़ा सा आ जाता है ना इख्तियार, आप जाए ना पासपोर्ट बनवाने, वो अगर आपको ना देना चाहे ना तो आपको जलील करते रहेंगे महीना पूरा, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम है, हमने ना लेकिन हमने खुद इन चीजों को जो है वो खराब किया हुआ, जब तक हम आवाम अपना हक खुद नहीं मांगेंगे ना इन लोगों से जिनको हम अपनी पैसों से तनख्वाह देते हैं, तब तक ये लोग भी जो है ना वो नहीं सुधरेंगे।
0: चलें जी, ये हमारा आलमिया है और अभी पता नहीं कहाँ तक ये चलेगा, उम्मीद ये की जाती है
2: कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनो,
0: आने वाला वक्त हम ये उम्मीद करते हैं कि अच्छा आएगा। इसके लिए वही बात मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि इनफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना पड़ेगा। डॉक्टर सलमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बातें बहुत करने वाली थी लेकिन वक्त की कमी की वजह से, लेकिन जो भी हुई जितनी भी हुई अच्छी हुई, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तरफ से भी कोई ऐसी बात हमारे देखने और सुनने वालों को अगर नागवार गुजरी हो तो उसके लिए माजरत भी चाहते हैं, हमारी कोशिश हमेशा यही होती है। जी,
1: लास्ट बात करूंगा मैं, आजकल की जो नौजवान नस्ल है मैं उनको सिर्फ एक पैगाम देना चाहूंगा कि जिनके वालदैन हयात हैं, जिनके वालदैन वफात हो गए हैं उनको अल्लाह मगफिरत दे, और जिनके वालदैन हयात हैं तो उनकी जितनी हो सके उनकी खिदमत करें और अपने जो कि फील्ड है उसमें आप मेहनत करें, उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएं लें, तो इंशाल्लाह आपका हर काम आसान होगा। और मैं इस चीज़ को मैं ख़ुद भी एक्सपीरियंस कर रहा हूं, अपने वालिदैन को बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत करें, उनको खुश रखें, तो इंशाल्लाह आप इस दुनिया में कामयाब हो जाएंगे।
0: थैंक यू सो मच। ये था जी हमारा आज का प्रोग्राम, और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद और डेनमार्क हमेशा के लिए पाइंदाबाद। शुक्रिया।

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: 33 21 29 84 ईमेल रेडियो स्नैपलाई हम वतन। हमारी वेबसाइट है हम

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 3 सितंबर पाकिस्तान में जुमेरात की दोपहर। आसिम मुनीर, डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज, डे 278। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज करते हैं लाहौर हाई कोर्ट से, जहां पर दिलेर जज जस्टिस राहील कामरान शेख ने इस्तीफा दे दिया है और स्कोर हो गया है 7-0। जी हां, 7-0, इसको आपने याद रखना है। आगे चल के आपको बताता हूं। राहील कामरान साहब ने आज जो इस्तीफा दिया है वो वाज़े तौर पर बगावत है उस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त फील्ड मार्शल रिटायर्ड सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री और उनके साथी मिलिट्री जनरल्स ने इम्पोज कर रखा है। ये चौथे जज हैं लाहौर हाई कोर्ट से जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले जस्टिस शाहिद जमील खान इस्तीफा दे चुके हैं, वो भी एक दबंग और दलेर जज थे। उसके बाद जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज, वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। फिर जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, बड़े दबंग जज थे, उन्होंने भी ये 27वीं तरमीम के बाद, आप यही कह लीजिए कि एक किस्म के एहतजाज के तौर पर उनका इस्तीफा भी सामने आया था। अब बहुत ही दलेर और बहुत ही काबिल जस्टिस मोहम्मद राहील कामरान शेख, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत ही काबिल जज थे, पहले बहुत ही काबिल वकील थे, फिर इन्हें खुद से कहा गया कि आप जज बने जरूर, वकालत से इस तरफ लाया गया और फिर इन्हें रिडंडेंट कर दिया गया। इन्हें इस तरह के मुकदमात दिए गए जहां से वो कोई इफेक्टिव जो कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो देकर जो मौजूदा जर्नल्स की गेम है उसमें कोई रोड़ा ना अटका सके। लेकिन जितनी देर भी जज रहे, दबंग तरीके से कोशिश करते रहे अवाम के हक में फैसले देने की, इंसानी हकूक और ख़वातीन के हकूक और जो भी मतवस्त तबकों के केसेस इनके सामने जाते रहे। हमने यही सुना कि इन्होंने बहुत उमदा तरीके से लोगों को इंसाफ देने का, कम अज़ कम अपने ताई इन्होंने सही की। आज इनका इस्तीफा जो आपके सामने रख रहे हैं, इसमें इन्होंने कोई वजह तो नहीं बताई, लेकिन बता भी दी, क्योंकि स्कोर अब हो गया है 7-0। आप कहेंगे वो कैसे, 4 तो मैंने आपको बता दिए। ये जजेस जो लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफा दे चुके हैं पिछले इन्हीं 1-2 सालों के अंदर, इससे पहले याद कीजिए 3 जजेस जो हैं कम अज कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इसी सारे मामले के अंदर इस्तीफा दे चुके हैं। तो अगर इन 4 और 3 को मिलाएं तो ये 7 हो जाते हैं। कम अज कम जो हायर जुडिशरी के जजेस हैं उनका मुकाबला अगर आप अपने मिलिट्री जनरल्स के साथ करें तो वहां से स्कोर है 0 का। तो 7-0 का मुकाबला है, मतलब हमारे मिलिट्री जर्नल्स में से कोई एक ऐसा नहीं जो ये कहे, या हमारी एयरफोर्स में से या नेवी में से, कि ये जो कुछ भी फील्ड मार्शल रिटायर्ड सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री और उनके साथी कर रहे हैं ये हमें काबिल कबूल नहीं है, हम इस्तीफा देते हैं। लेकिन कम अज कम हमारी जो हायर या सुपीरियर जुडिशरी है उसमें से 7 लोग अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं। हम इन तमाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। ये वो पुत्र हैं जो हटाते नहीं विकते। इनमें से कुछ ने पहले माजी में गलतियां भी की, जैसे आप सबको पता है कि जस्टिस अतर मिनल्ला हों या जस्टिस मंसूर साहब हों, उन्होंने बड़े दबंग और दलेर फैसले भी किए, लेकिन फिर 90 दिन के इलेक्शंस के अंदर आकर उनसे भूल और चूक भी हुई। बहरहाल आखिर पर उन्होंने अपने इस्तीफे के साथ उस सब चीजों का दावा किया। तो एक तरफ सिविलियंस की तरफ से रूल ऑफ लॉ के लिए, आप ये कहिए कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुर्बानी दी गई है, और 7 के करीब जजेस जो हैं वो इस्तीफे देकर घर जा चुके हैं। लेकिन ये मामला शायद तब और भी इफेक्टिव होगा जब ये हर तरफ से लोग अपने ज़मीर की आवाज़ पर इसी तरीके से बोलेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारी मिलिट्री के अंदर ऐसी कोई आवाज़ अभी तक सुनने में नहीं आई। आप जो जाहिर है सर्विंग है वो तो छोड़ दीजिए, उन्होंने तो जो रिटायर्ड लोग हैं उनको भी धमकाया हुआ है, उनको भी चुप करवाने के लिए हर किस्म का हरबा जो है वो इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ये पहली खबर थी लाहौर हाई कोर्ट से। एक तरफ से तो अफसोसनाक खबर है, क्योंकि आज एक और दबंग जज जो थे उनको अपना ओहदा छोड़कर घर जाना पड़ा, क्योंकि उनसे कानून के मुताबिक जो उनकी ताकत थी वो पहले ही छीनी जा चुकी थी। छुट्टियों के बाद उनका तबादला जो है वो मुल्तान बेंच में किया हुआ था। अब ये ना समझिएगा कि वो मुल्तान बेंच की तरफ की वजह से इस्तीफ़ा दे रहे थे, क्योंकि ये तो मामूल की बात है, जजेस मुल्तान बेंच भी बहावलपुर बेंच भी जाते रहते हैं और फिर प्रिंसिपल सीट पर भी वापस आते रहते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं, ये तो हो गई। अब अगली खबर माजिद निज़ामी, वो कहते हैं कि वक्त आ पहुंचा फौज में अहम तकर्रियों का, क्योंकि पिछले 2 से 3 साल से ये तकर्रियाँ फील्ड मार्शल रिटायर्ड सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री ने रोक रखी हैं। हमें हमेशा ये बताया जाता है कि इदारा है, इदारों में ये काम नहीं होते जो फील्ड मार्शल ने किए हैं। इदारों में चीज़ें नज्म व ज़ब्त और एक तरतीब से चलती हैं। जहाँ तरतीब ना हो, जहाँ कोई भी अकाउंटेबिलिटी का, प्रमोशन का या किसी भी अपॉइंटमेंट का तरीकाकार ना हो, वाज़े तरीकाकार ना हो, फर्दे वाहद की हुकूमत हो, उसको इदारा नहीं कहते। तो जो भी लोग काम कर रहे हैं इस वक्त, जो अपने आप को इदारे में काम करने वाले कहते हैं, वो अपनी गलत फहमी की तसीह कर लें कि आप एक फर्दे वाहद के नीचे काम कर रहे हैं, किसी इदारे में काम नहीं कर रहे। फर्दे वाहद जो डिसाइड करेगा उस इदारे का वही कानून है, वही इंसाफ है। बहरहाल माजिद निज़ामी कहते हैं के 10 के करीब लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाने हैं आने वाले दिनों के अंदर। ये जाहिर है अब ये मौका आन पहुंचा है, क्योंकि अगले महीने कोई इतने ही आप कह लीजिए, ये शायद इससे भी ज़्यादा, अब जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनकी रिटायरमेंट एक्सटेंशन के बाद दोबारा उनकी रिटायरमेंट जो है वो हो रही है। कईयों को एक्सटेंशन मिली हुई है और कईयों की रिटायरमेंट हो रही है और वो घरों को जा रहे हैं। अब क्योंकि जो नई आईनी तरमीम करवाई है, आईनी तरमीम तो उसे आप नहीं कहेंगे, लेकिन जो असम्बली से नई तरमीम करवाई है, उस तरमीम के बाद जो CDF हैं, आपको पता ही है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, उन्होंने अपने नीचे सब कुछ ले लिया है। अब ये जितने भी नए जर्नल्स आ रहे हैं या जो पहले जर्नल्स बैठे हुए हैं, उनमें से किसको एक्सटेंशन देनी है, किसको फारिग करना है, किसको रखना है, ये फैसला भी वही करेंगे। अब सोचा ये जा रहा है कि 2-3 चीज़ें बहुत ही अहम हैं। एक तो क्या मौजूदा DGISI जो आसिम मलिक हैं, उनकी एक्सटेंशन, वो पहले ही एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, वैसे तो पूरा मुल्क ही एक्सटेंशन पर है, वो भी एक्सटेंशन पर है, तो क्या उनका ये ओहदा अब ख़त्म करके उनको घर भेजा जाएगा या एक्सटेंशन पर मज़ीद एक्सटेंशन दी जाएगी। फिर वाइस आर्मी चीफ किसको लगाया जाएगा, ये जो वाइस आर्मी चीफ होगा इसका ओहदा भी खाली है और फील्ड मार्शल ने अभी तक किसी को नहीं लगाया। फिर जो CGS है वो कौन होगा, वो भी बहुत ही अहम ओहदा है फौज के अंदर, उस पर अपॉइंटमेंट किसकी की जाएगी, उसको भी दबा कर रखा हुआ है, क्योंकि जो पहले CGS थे उनको आपको पता है कि 4-स्टार जनरल बना के वो कमांड सेंटर की तरफ या कमांड जो सर्विस थी उसकी तरफ भेज दिया, जहां पर एटम बम वगैरह का, लेकिन अब वो उसके आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से मुख्तार हैं, बल्कि अब फील्ड मार्शल रिटायर्ड सैयद आसिम मुनीर के पास ही वो सारा कंट्रोल भी है। तो अब ये 10 लेफ्टिनेंट जनरल्स की 4 साला मुद्दत आने वाले हफ्तों में मुकम्मल हो रही है, मतलब वो रिटायर हो रहे हैं और जाहिर है उन्हीं की तकर्रियां होनी है। इससे पहले शायद 20 साल पहले ऐसी कोई सूरत हाल थी जब 4 के करीब जनरल्स की एक ही बार कोई तरक्की वगैरह की गई थी, वरना फौज के अंदर जो निज़ाम है वो चलता रहता है अपने वक्त के ऊपर। ये 4 या शायद नंबर मैं गलत कह रहा हूँ इस टाइम, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में पहले फौज में ये सब कुछ देखने में शायद नहीं मिला कि एक ही दफ़ा से इतने सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स रिटायर हो रहे हों और पीछे से किसी की भी तरक्की ना की हो, सबको रोक के रखा हो, क्योंकि फील्ड मार्शल अपनी बैटिंग कर रहे हैं या अपनी फील्डिंग लगा रहे हैं और अपनी मर्जी के अफसरान को फौज के मुख्तलिफ ओहदों पर लगाकर अपना कब्जा जो है वो लंबा अरसा चलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ सिविलियंस को सूबों के नाम पर लड़वाना चाहते हैं, दूसरी चीज़ों में उलझाना चाहते हैं और फौज की जो अपॉइंटमेंट्स हैं, तकर्रियाँ हैं, उनको दबा के बैठे हैं ताकि वहाँ पर भी अपने इक्तदार को वो मुसल्लत रख सकें। तो ये भी देखना पड़ेगा, साथ साथ वो कहते हैं कि नादरा के जो चेयरमैन हैं उनका ओहदा अब किसको दिया जाता है, इन्हीं के पास रहता है जो मौजूद हैं, या इनको मतलब एक्सटेंशन दी जाती है या कोई नया लाया जाता है। फिर ये भी देखा जाएगा कि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अथॉरिटी है और मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उनके ऊपर क्या किया जाता है। मिलिट्री इंटेलिजेंस में अमूमी तौर पर अभी तक तो एक मेजर जनरल जो है वो उसे हेड करता है। देखते हैं कि क्या इस डिपार्टमेंट में भी अब एक लेफ्टिनेंट जनरल को लाया जाता है। तो ये सारे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में आने वाले हफ्तों में क्लियर हो जाएंगे जब फील्ड मार्शल रिटायर्ड आसिम मुनीर या तो अपने इन साथियों को जो 10 रिटायर होने जा रहे हैं इन्हें या तो एक्सटेंशंस देंगे और या फिर इनकी जगह पर नए लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं उन्हें प्रमोट किया जाएगा। अच्छा, एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ जरा सुन लीजिए क्योंकि फौज से रिलेटेड ही खबरें हैं तो वो भी आपको दे दें। गुज़श्ता रोज जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील बरमल के इलाके आज़म वर्सक में पाकिस्तानी फौज के क्वाड कॉप्टर की फायरिंग से एक मासूम बच्ची और 2 कमसन भाई शदीद जख्मी हुए थे। आज 2 ये जो नन्हे बच्चे थे जो इसमें जख्मी हुए थे वो जख्मों की ताब ना ला सके और वो शहीद हो गए। इनकी नन्ही बहन अभी भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और हॉस्पिटल के अंदर अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। तो ये सूरत हाल है। आपको पता है कि इमरान खान वाज़े तौर पर जेल से ही इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं कि ऐसे हमले, ऐसे ड्रोन क्वाडकॉप्टर्स हमले जिनसे मासूम सिविलियंस की जाने जाएं उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ना उन्होंने कभी इस पर बयान दिया ना उन्होंने FIR दर्ज की और वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खामोश है, बल्कि दूसरे लफ्जों में इस तरफ वो नज़र भी नहीं उठा रहे। ऐसे लगता है जैसे उनके सूबे में ये हो ही नहीं रहा, उनको इससे कोई परवाह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। BLA अटैक्ड पश्तून ड्राइवर्स, मतलब कि अब BLA जो है वो पहले पंजाबी ड्राइवर्स को सिर्फ अटैक करती थी, अब उन्होंने पश्तून ड्राइवर्स को भी अटैक करना शुरू कर दिया है और ट्रक्स जो हैं उनको आग लगा दी है। आप देख सकते हैं सड़कों के ऊपर ट्रकों को रोक के उनको आग लगा दी जाती है और उनके अंदर जितना भी सामान मौजूद होता है जाहिर है जल के खाकसर हो जाता है। उससे जो वहाँ का लोकल ट्रेड है, बिजनेस है, आप उसके बारे में खुद ही सोच सकते हैं। ये चागी बलूचिस्तान के अंदर हुआ है, वहाँ पर वो चेकिंग करते रहे हैं ट्रक्स की, ड्राइवर्स की आइडेंटिटी कन्फर्म करके अब पश्तून ड्राइवर्स को भी निशाना बना रहे हैं। फिर बलूचिस्तान में हमारे पास एक वीडियो है जिसमें एक पंजाबी ड्राइवर जो है वो बलूचिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है वहाँ से दूसरे पंजाबी ड्राइवर्स को ये मैसेज दे रहा है कि खुदा का वास्ता इस तरफ मत आना, यहाँ हालात अच्छे नहीं हैं। क्या मैसेज है पंजाबी ड्राइवर का, सुनिए।
2: अस्सलाम वालेकुम सब ड्राइवरों नू, मेरी तरफ सलाम हो गया भाई, क्या हाल है, ठीक ठाक हो? उम्मीद करता सारे भाई खैरियत नाल हो सो। भाई जान मैं जी इस टाइम बलूचिस्तान है, तो बलूचिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, इंतहा दे हालात ख़राब हैं। मैं सब ड्राइवरों नू गुजारिश करे सा, जितने भी मेरे पंजाबी भाई हैं, जितने भी मेरे पंजाबी भाई हैं, कोई चाहे मुजदे वाला है, चाहे कोई शाहजोर वाला है, चाहे कोई बैडफोर्ड वाला है, चाहे कोई FP वाला है, चाहे कोई सैंपल वाला है, मैं सब जगह गुजारिश करे सा कम अज कम अपना नहीं, अपने बच्चों का दिफा करो, अपने बच्चों का ख्याल करो, अपने माँ बाप का, अपने भैन भाइयों का। जिंदगी इंसान एक दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। असी तो फंस गए मेरे भाई आगे, असी कोशिश करें निकलने की, अल्लाह खैर करे।
1: सुन लिया आपने, तो ये सूरत हाल है। एक तरफ फील्ड मार्शल जो है वो अपनी बिसात लगा रहे हैं, एक तरफ वो पूरी दुनिया के मसले ख़त्म करवा रहे हैं और दूसरी तरफ BLA ट्रकों को जला रही है, हमारे बच्चे क्वाड कॉप्टर के हमलों से मारे जा रहे हैं और ड्राइवर मैसेज दे रहे हैं कि खुदा का वास्ता है इस तरफ कोई मत आए। आगे आपके सामने एक एक्सक्लूसिव खबर रख देते हैं। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर है जो आपको शायद कहीं और से नहीं मिलेगी। ये एक्सक्लूसिव खबर ये है कि जो DG ISPR हैं उनकी नई एक उनको असाइनमेंट दी गई है और वो असाइनमेंट ये दी गई है कि अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बनना है। आप हैरान होंगे वो कैसे। अमूमी तौर पर जो फेडरल कैबिनेट होती है, वफाकी काबीना, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करती है। DG ISPR जो होते हैं वो हर वजीर के मातहत बनते हैं। जो फेडरल कैबिनेट का वजीर होता है ओहदे के हिसाब से वो डायरेक्टली उसके रिपोर्टिंग में तो वो नहीं आते हर वजीर के, वजीर दिफा की रिपोर्टिंग में तो वो आएंगे, लेकिन फेडरल कैबिनेट के हर वजीर और मशीर से वो ओहदे के हिसाब से नीचे होते हैं। लेकिन अब ये तमाम वजीर जो हैं वो DG ISPR को रिपोर्ट करेंगे। आप यही समझ लीजिए कि एक किस्म का DG ISPR को अब वजीर आजम ही लगा दिया गया है। ये बहुत ही मुसद्दका खबर हम आपको दे रहे हैं कि नई स्ट्रेटजी बनाई गई है जिसमें DG ISPR को रिपोर्ट करेंगे या DG ISPR के सामने अपनी परफॉर्मेंस रखेंगे तमाम के तमाम मिनिस्टर्स, और उसके लिए एक कम्युनिकेशन का मरबूत सिस्टम बनाया गया है। उस कम्युनिकेशन के सिस्टम को कंट्रोल करेंगे DG ISPR। तमाम जितने भी फेडरल मिनिस्टर्स या एडवाइजर्स हैं उन सबको वो कम्युनिकेशन जाएगी हर रोज, और ये देखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा कि सूबों के मामलात हों या फील्ड मार्शल रिटायर्ड सैयद आसिम मुनीर की जो प्रायोरिटीज हैं उनके ऊपर कौन कौन सा वजीर जो है वो बयान देता है, और जो भी उस पर बयान देता है उसको शेयर किया जाएगा उस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, ताकि बाकी तमाम वजीरों को पता चले कि ये इस शख्स ने बयान दिया है तो मुझे भी अब देना है, या किस किस ने दिया है। तो जो देंगे बयान उनको शाबाश दी जाएगी, उनको शाबाश कहा जाएगा, और जो नहीं देंगे बयान उनकी जाहिर है एक किस्म की सरजनश भी है और खामोश पैगाम भी है कि आप अगर ये पैगाम नहीं देंगे तो हम आपको देख भी रहे हैं और गिन भी रहे हैं। ये जो नया कम्युनिकेशन का सिस्टम जनरेट किया है डीजी आईएसपीआर साहब ने, गालिबन इसके बाद ही जो एहसन इकबाल हैं उन बेचारों ने भी कल सूबों के हक में बयान दिया है। और आपको ये भी इंटरेस्टिंग बात बता दें कि उस कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर एहसन इकबाल का ये बयान शेयर भी किया गया, और उससे पहले मुस्तफ़ा कमाल और दूसरे जो वजीर हैं उनके बयान भी वहाँ पर बताए गए कि ये देखिए ये कितने अच्छे बच्चे हैं कि इन्होंने वैसे बयान दिए हैं जैसे बयान फील्ड मार्शल साहब चाहते हैं। तो अब डीजी साहब को मॉनिटर लगा दिया गया है, आप ये कहें कि खड़पैंच लगा दिया गया है, आपको ये तो पता ही है कि डीजी साहब जो हैं वो 58 को 58 कहते हैं, तो अब डीजी साहब को कोई एक 58 नंबर ही वहां पर आप ये कहिए कि उन्होंने मॉनिटर लगा दिया है पूरी की पूरी फेडरल कैबिनेट के ऊपर, और वो पूरी कैबिनेट पर नजर रखेंगे, और जैसे आपको पता है कि मदारी जो है वो तमाशा करवाता है, तो कैबिनेट पूरी बंदर होगी, डीजी साहब के हाथ में डंडा होगा और वो मदारी होंगे और वो बंदर को वैसे नचाएंगे जैसा उनका दिल करेगा। ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, ये हमारे पास जो स्टोरी है ये हमने एक से ज्यादा सोर्सेस से कंफर्म करके हम पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने रख रहे हैं। आगे चलते हैं। लंदन में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बादशाह साहब ने बुलाया, बादशाह चार्ल्स ने, किंग चार्ल्स ने अपने यहाँ उन्हें एक दावत पर बुलाया, खाने पर बुलाया। वहाँ पर टीम जब जानी थी तो उसके नंबर शंबर गिने गए तो टीम के नंबर कम थे। अब उससे ये लगा कि यार ये तो बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ना कि हमारे जो बहुत ही ब्रिलियंट माइंड्स हैं हमारे जर्नल्स और उनके लगाए गए जो डाउट हैं वो काम डालने के बाद सोचते हैं। आपको याद होगा कि दो ही दिन पहले 7 प्लेयर्स को निकाल दिया गया था टीम से, और उनके साथ हेड कोच को और बॉलिंग कोच को भी निकाल दिया गया था। लेकिन फिर क्या किया गया, फिर टेलीग्राफ ये कह रहा है, ये टेलीग्राफ की स्टोरी है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को ये लगा कि हो सकता है, ये जाहिर है अभी स्टोरी डेवलपिंग है, हम इसे हतमी तौर पर तो नहीं कह सकते, जो रिपोर्ट हुआ है मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पर, टेलीग्राफ पर, वो आपके सामने रख रहे हैं। उसमें ये कहा गया कि जिनको निकाला गया था उन सबको ये कहा गया कि अब वापस आ जाएं, आप कम से कम ये खाना अटेंड कर लें बादशाह चार्ल्स का, उसके बाद आपको टीम से तो निकाल ही दिया लेकिन जाते जाते ये खाना अटेंड कर लें ताकि नंबर ज़रा बड़ा हो जाए, भरी भरी टीम लगे, क्योंकि उन्हें ये शक थी कि कहीं ये ना हो कि थोड़े से प्लेयर लगें और हमारी बेइज्जती हो, क्योंकि शायद नए प्लेयर्स अभी लंदन पहुंचे नहीं होंगे। तो जिन लोगों को निकाला गया था उनमें से फिर मोहम्मद रिजवान, इमामुल हक, सलमान अली आगा, अली उस्मान, आमिर जमाल, मोहम्मद अवैस और खुर्रम शहजाद को निकाला गया था। इनमें से फिर अली उस्मान, आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अवैस जफर ने इस खाने में शिरकत की, और दो तीन दूसरे जो लोग थे उन्होंने शिरकत नहीं की, और उनमें से एक प्लेयर ने यह भी कहा एहतजाजन कि मैं शिरकत नहीं करूंगा, आपने जिस तरह से, जिस बेइज्जती के साथ हमें टीम से अलग किया है। तो ये एक अलग ही वहाँ पर पाकिस्तान के लिए सूरत हाल बनी, लेकिन साथ ही साथ ये कोई नई सूरत हाल तो नहीं है, ये पाक सरजमीन का अब हार्ट स्टेट जो आसिम मुनीर की है उसका यही इंतज़ाम है कि पहले खिलाड़ियों को निकाल दो फिर उन्हें वापस बुला लो कि खाना अटेंड कर लो, निकाला तो तुम्हें हुआ ही है, पहले चीनी जो है वो मुल्क से एक्सपोर्ट कर दो फिर उसे इम्पोर्ट कर लो, फिर जो इम्पोर्ट किया उसे वापस फिर एक्सपोर्ट कर दो। तो ये नया काम नहीं है। इसी तरीके से आपने ये भी देखा कि CDF जो है, चेयरमैन कह लें उन्हें, चीफ कह लें ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वो साहब जो हैं उन्होंने सूबे बनाने हैं सिविलियंस के लिए, क्योंकि यूनिट्स को छोटा करना है, डिसेंट्रलाइज करना है, लेकिन मिलिट्री सारी सेंट्रलाइज करनी है, एयरफोर्स भी नीचे लेनी है, नेवी भी नीचे लेनी है, आर्मी भी नीचे लेनी, वहाँ सब कुछ बड़ा करना है, वहाँ यूनिट बड़ा करना है, वहाँ सब कुछ सेंट्रलाइज करना है, लेकिन سویلینز کے لیے جو انتظامات ہیں وہاں ڈی سینٹرلائز کرنا. اور منافقت دیکھیے, ابھی بلوچستان کے عمائدین سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پولیٹیشنز کو کم از کم جمہوریت میں سیاست میں 50% ووٹ لینے چاہیے جیتنے کے لیے. وہاں پر قوانین یاد ہیں, خود نہ ہی پی ایم اے سے تو یہ نہیں ہے, او ٹی ایس سے, نہ ہی اپنے او ٹی ایس کا حلف یاد ہے, نہ ہی پی ایم اے کا حلف یاد ہے, اور نہ ہی اپنی ریٹائرمنٹ یاد ہے. خود اپنے اوپر کوئی قانون نہیں ہے, لیکن یہ پولیٹیشنز کو کہتے ہیں کہ آپ نے 50% ووٹ کم از کم لے کر آنے ہیں تو پھر آپ نے آگے بڑھنا ہے, ورنہ آپ جو ہے جو بھی کریں گے وہ غلط کریں گے. آگے بڑھتے ہیں, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور وہ عمران خان کے بیٹوں کے انٹرویوز ہیں جو دھڑا دھڑ اب آ رہے ہیں. ٹائمز ریڈیو نے ان کا لیٹسٹ انٹرویو کیا ہے جس میں قاسم خان اور سلیمان خان نے بہت کھل کے باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے والد کو 6x8 کے ایک سیل میں رکھا گیا ہے, وہاں کم روشنی ہے, ان کو کتابیں بھی نہیں دی جاتی, اور ہمارے والد کو 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ سیل سے باہر نکالا جاتا ہے. جیل میں بہت سے لوگ ہیپاٹائٹس سے مر رہے ہیں, ہمارے والد کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کل کو یہ بہانہ کیا جائے کہ وہ قدرتی موت مر گئے ہیں. مطلب انہیں اتنا تنگ کیا جا رہا ہے, ان کے ارد گرد ماحول اتنا آپ یہ کہہ دیجئے کہ ٹف بنا دیا گیا ہے, یا ان کے جو حالات ہیں, معمولات زندگی ہیں, ان پر اتنی سختی ہے کہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ بیمار ہو جائیں اور ان کی زندگی ختم ہو جائے, یہ انہوں نے بتایا. پھر انہوں نے کہا کہ جب ہماری پھپھو ملی ہیں سرکاری ہسپتال کے اندر ہمارے والد سے, تو ان کی آنکھ کے اوپر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی. مین عمران خان صاحب کی آنکھ پر غالباً کوئی آئی پیچ لگا ہوا تھا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا بلڈ پریشر بھی زیادہ تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ رہتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے والد کی بات نہیں کروائی جاتی. کئی دفعہ صبح 5 بجے برطانیہ کے وقت کے مطابق فون کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تھوڑی دیر میں بات کروائیں گے, پھر انتظار کروایا جاتا ہے اور کبھی بھی بات نہیں کروائی جاتی, اور ہمارے والد کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. کھل کے انہوں نے باتیں کی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ دا ٹائمز اور سنڈے ٹائمز نے بہت ہی ایک تگڑا ایڈیٹوریل جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے اس پر لکھا ہے. انہوں نے کھلے انداز میں, خبر نہیں ہے, ایڈیٹوریل ہے, جس کا مطلب ہے کہ جو ان کا ایڈیٹوریل بورڈ ہے وہ اب یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, عمران خان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, ان کے انسانی حقوق جو ہے ان کو سلب کیا جا رہا ہے. آگے چلتے ہیں, اگلی خبر یہ ہے کہ امیر, سابق امیر جماعت اسلامی, انہوں نے جو سب کو پہلے سے پتا تھا اس کے اوپر سے ایک دفعہ پھر پردہ اٹھا دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آصف زرداری اور شہباز شریف کو کہا تھا کہ عمران خان کی حکومت نہ گرائیں, لیکن شہباز شریف نے آگے سے کہا کہ عمران خان کو لوگ بھول جائیں گے, یہ تھوڑی دیر ہوگی اور آپ دیکھیں گے عمران خان کو لوگ بھول جائیں گے. انہوں نے کہا کہ حکومت گرانے میں جنرل باجوا کی سپورٹ حاصل تھی, جنرل باجوا نے اراکین اسمبلی کو فون کر کر کے ووٹ دینے کا خود کہا, لیکن جنرل باجوا اس قدر غلیظ اور جھوٹے تھے, ہیں ابھی بھی, کہ وہ منہ پر مکر جاتے تھے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. میں نے آپ کو ایک احوال بتایا تھا کہ ایک میٹنگ میں انہوں نے کلمے کی قسمیں کھائیں, قرآن اٹھایا, جبکہ ہم سبھی کو پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. نہ وہ اپنی یونیفارم کا خیال کرتے تھے, نہ اپنے عہدے کا خیال کرتے تھے, بس جھوٹ بولتے تھے کہ بغیر سوچے بولتے تھے. آپ یاد کیجئے کہ بیگم کے ساتھ فرانس میں بیٹھے تھے, ایک شخص نے آ کے انہیں گندی گالیاں دی اور وہ مکر گئے کہ وہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں. بس یہی کرتے تھے, وہ ہر چیز میں مکر جاتے تھے. اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان ان کا یہ سارا, ان کو آئینہ دکھا چکے, یا ان کا یہ ساری کی ساری جو گیم تھی اس کے اوپر سے پردہ اٹھا چکے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کس قدر یہ گندا کردار ادا کیا تھا. اب سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب جو ہیں, انہوں نے بھی کھل کر بتا دیا کہ جنرل باجوہ خود فون کر کے

0: के अंदर वो आजकल ब्रॉडकास्ट करते हैं अपनी कार्रवाई को और डिफरेंट सरकारी अफसरान को बुलाते हैं। सरकारी अफसरान खुलकर आके वहां पर कहते हैं कि किस तरीके से करप्शन हो रही है। हाल ही में आपको ये बताएं कि जो सीसीडी के हेड हैं इस वक्त, उनको और जो इस वक्त के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हाल ही में सरकारी अफसरान के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। सुहेल जफर चट्ठा जो सीसीडी को भी हेड करते हैं और एंटी करप्शन को भी हेड करते हैं पंजाब में, वो थे, और उसके साथ साथ इस वक्त के चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान। जाहिद जमान साहब ने यह कहा सरकारी अफसरान को कि पहले तो मैंने एंटी करप्शन को रोक रखा था, मैं दरमियान में था, मैं कार्रवाई नहीं करने देता था, लेकिन अब लोग खुलेआम करप्शन कर रहे हैं, खुलेआम लोग रिश्वत लेने और देने की बातें कर रहे हैं, इसलिए अब चीफ मिनिस्टर ने यह फैसला किया है कि एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट जो है वो भरपूर कार्रवाई करेगा और मेरी इजाजत के बगैर भी अब वो कार्रवाई कर सकेंगे। मतलब ये कि चीफ सेक्रेटरी का पता काट दिया गया है बीच में से, सुहेल जफर चट्ठा को डायरेक्ट हक दे दिया है या इख्तियारात दे दिए हैं मरियम नवाज ने कि वो डायरेक्ट कार्रवाई करें। अब करप्शन तो आपको पता है शरीफ खानदान का कौमी खेल है, करप्शन से उन्हें मामला नहीं है। जो मौजूदा जाहिद जमान है उनके बारे में ये ओपिनियन है कि वो मिलिट्री जर्नल्स की तरफ से लगाए गए हैं, इसलिए मरियम नवाज जो हैं वो उनको तो तब्दील नहीं कर सकी अभी तक, इसलिए वो अपना एक छोटा सा चीफ सेक्रेटरी अपना बनाने की कोशिश कर रही हैं। जो सुहेल जफर चट्ठा है उन्होंने उन्हें चीफ सेक्रेटरी से बाला ही बाला जाकर एक ब्रीफिंग दी और अपने लिए मामलात वहां से अप्रूव करवा लिए, और अब वो डायरेक्टली चीफ सेक्रेटरी की इजाजत के बगैर काम करेंगे। एंटी करप्शन का जो मामला होगा वो अफसरान पर डायरेक्ट केसेस बनाएंगे। अब आगे चलते हैं, एक हेयरिंग हुई इस्तेहकाक कमेटी में जहां पर पीटीआई के गालिबन ये एमपीए हैं फरुख जावेद मून, ये हमारे दोस्त जो हैं ये अक्सर बेचारे इनकी किस्मत खराब है, जब भी कभी एहतजाज हो सबसे पहले ये पढ़े जाते हैं, पता नहीं इनके साथ क्या होता है, ये घर से निकलते हैं पुलिस पकड़ लेती है, मतलब सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में पीटीआई का जो भी बंदा पकड़ा जाता है उनमें पहले नामों में ये हमारे दोस्त जो फरुख जावेद मून साहब हैं, इनका नाम इसलिए मुझे याद रह जाता है कि इनके नाम के साथ माँ बाप ने मून लगाया हुआ है, चांद है अम्मा के, हैं भी चांद जैसे वैसे हमारे भाई, लेकिन पुलिस वाले सबसे पहले इन्हें धर लेते हैं। अभी ये इस्तेहकाक कमेटी में गए और इन्होंने कहा कि एक्साइज के एक डिप्टी डायरेक्टर नदीम, ये उनके पास एक फलाही काम के लिए गए, जो अवाम के लिए फलाही काम था, पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में कोई काम था, रफाई काम होगा या रफाई आमा का काम होगा, वो करवाने के लिए गए और उन्होंने इनसे रिश्वत मांगी, और रिश्वत में उन्होंने कहा कि मैं तो खुद यहां रिश्वत दे के बैठा हुआ हूं, आप रिश्वत देंगे तो काम करूंगा वरना मैं काम नहीं करूंगा। ये डिप्टी डायरेक्टर नदीम जो एक्साइज के हैं उन्होंने कहा, और ये कौन कह रहा है, ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमपीए फरख जावेद मून कह रहे हैं। आगे से वो जो नदीम साहब हैं वो भी टकरा गए उनको, उन्होंने कहा कि आप तो आए थे डीवीआरएस का लाइसेंस मेरे से रिन्यू करवाने, आप पहले तो मुझे बताएं कि ये कौन सा रफाए आमा का काम है, ये डीवीआरएस क्या होता है। ये डीवीआरएस जितने भी ये ऑटोमोबाइल्स के डीलर्स होते हैं, ये गाड़ियां शाड़ियां बेचने वाले जो डीलर्स हैं, इनका लाइसेंस होता है डीलर्स का अपना लाइसेंस, ताकि वो एक्साइज के बहुत सारे काम अपनी डीलरशिप पर ही कर सकें और बंदे को एक्साइज के दफ्तर ना जाना पड़े। तो वो जो डीवीआरएस का लाइसेंस है वो खालिस्तन एक कारोबारी काम है, जाहिर है अवामी फलाह का कोई काम नहीं है। तो जो नदीम साहब हैं वो इनको टकरा गए, उन्होंने कहा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप अवामी फलाह के काम के लिए आए थे, आप पहले जरा बताएं ना कि कौन सा अवामी फलाह का काम था। यहां पर एमपीए साहब के पास जवाब नहीं था।
1: और मुफादे आमा के काम पर मुझसे फीस के साथ अजाफी रकम मांगी गई। सर कौन सा मुफादे आमा का काम था, मुझे जरा ये एक्सप्लेन कर दिया जाए
2: कि ये मुझे डायरेक्ट कह रहे हैं कि मैं तो पैसे दे के इधर आया हूं सीट पे, और चीज का मैं हलफ दे रहा हूँ कि 50,000 इन्होंने मेरे सामने बंदे को बुलाया जाकर उसे दे के आओ, अगर मैं नहीं दूंगा तो वो सीट पे अगले ट्रांसफर कर देंगे।
3: ये अपनी नौयत की एक अलग से प्रिविलेज मोशन है, आज तक नहीं देखा सुना कि इस तरह से किसी अफसर ने बराह रास्त किसी नुमाइंदे से ये बात कही हो कि मैं पैसे दे के यहाँ पे अपॉइंट हुआ हूँ और मैंने आगे भत्ता देना है और मैंने आगे वो पैसे भेजने।
0: तो दोनों पार्टीज की जो इंटेग्रिटी की साइड है वो गौर कीजिए कि वो जो अफसर है जो डिप्टी डायरेक्टर है वो सीधा कहता है रिश्वत देकर लगा हूं, मुझे रिश्वत दो, ایم پی اے آ کر استحکام

0: कमेटी में अपना डाल देता है केस। इस्तेहकाक कमेटी में आके जब डिप्टी डायरेक्टर अपीयर होता है तो वहां भी एमपीए अपनी जो स्टेटमेंट पढ़ता है उसमें बताता नहीं कि मैं जाती काम से गया था, वो कहते हैं कि मैं रफाए आमा के काम के लिए गया था। तो डिप्टी डायरेक्टर कहता है कि रफाए आमा का फिर काम बताएं कौन सा था। ये नहीं बताते कि डीवीआरएस का जो लाइसेंस अपने कारोबार का था या अपने किसी दोस्त के कारोबार का, वो रिन्यू करवाने गए थे। तो ये हाल चल रहा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा आप सोचिए। इंटेग्रिटी जो इन ऑफिसेस में होनी चाहिए वो नापैद हो चुकी है। मुझे यहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84, ईमेल radio@hamwatan.com। हमारी वेबसाइट